आपे करे कराए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम वसे मन अंतर, नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरलाया आया, पाणा मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा। गुरमुख तेरा पाणा पावे, सहजे ही सुख सच समावे,

पौड़ी। पाणे हुक्म नाए ओन पाणे सुख पाया, पाणे सतगुर मेले ओन पाणे सच ते आया। पाणे जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पढ़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रमाण है जे कुल का करे उधार। अगै जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो गई, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार। पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है, सब तिस दे जच्चा। ज्यो नानक आप नचाएंदा, तिवही को नचा सुद। मारू वार महला पंजवां, डखणे महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू चाहो सज

देख महला पंजवा उठी चालू कंतले हों पसी तो दीदार काजल हारत मोल रस बिन पसे हबरा शार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पापुन विचारिया ब्रह्मा विष्णु महेश उत्रै गुण विस्थारिया नवखंड प्रथमी साज हर रंग सवारिया वेकी जन तो पाए अंतर कल तारिया तेरा अंत ना जाने कोए सच सिरजन हारिया तू जाने सब विद्याप गुरमुख निस्तारिया डखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा हिक भोरी ना वे छोड़

बूढ़ोगे परवार सकल स्यों, राम न जपवा भागे रहाओ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उत्तर सुपारा। जी बदो सो धर्म कर था पाओ, अधर्म कहो कत पाई, आपस कहो मनवर कर था पाओ, कागो कहो कसाई। मन के अंधे आप ना बुझाओ, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचहो, जन्मा व्यर्था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सो को पूछो जाई, कहे कबीर रामे राम छूटो, नाहे ता बूढ़े पाई, बने बसे क्यों पाई है, जो लो मने मनो नत जाय बेकार। जे कर बन समसर किया, ते पूरे संसार सार सुख पाई है, रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया, कहां गुफा मैं बास, मन जीते जग जीतिया, जाते बिख्या ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई, टुक चाहन माहे बिढान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान, कह कबीर अब जानिया, गुर ज्ञान दिया समझाए, अंतरगत हर पेटिया।

बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आतम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रया लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी कर।

कायागढ़ सोहया मेरा प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास विसारी, अदृष्टया गोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कह बलिहारी है। सतगुर आगे सीस भेट दे, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावे जगदीश, ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाग सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल जो समाणी, हर कृपा कर धरणी तरा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगमा था, तू कड़कड़ पूर रहया, तू अलाखा पेव अगम, गुर सतगुर बचन लहया। तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, बबेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया। तुम स्वामी अगमा था, तू कड़कड़ पूर रहया, सेवक जन सेवै ते प्रमाण, जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप, खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिनसे, जिन मन चित एक आरा दया, तिनका जन्म सफल्यो सब किया करता, जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवै ते प्रवान, जिन सेव्या गुरमत हरे। तू अंतर जामी हरे आप, ज्यो तू चलावै प्यारे, हों तिवें चला, हमरे हाथ किश नाहे, जा तू मिलै तहो आए मिला। जिनको तू हर मिलै स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन उपर, जिन गुर का भाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावै प्यारे, हो तिवें चला। तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सिरट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम। जिन कह तुर लिख माथ, जिन कहो तुम, जिन कहो तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुर बचनी हर जापिया। तन तन तेजन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो पया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश, सब करता सृट नाथ। तू जल थल महियल भरपूर, सब उपर साज धनी, जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उज्जल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन पय सुहेले, हर राख लिए रखण हार। हर संत संगत जन सुन हो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल महियल भरपूर, सब उपर साज तनी, तू थान थनंतर हर एक, हर एको एक रविया, वन त्रिण त्रिपवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चवया। सब चवै हर हर नाम करते, असंख गणत हर त्यावै, सो धन धन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावै, सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान थनंतर हर एक, हर एको एक रविया, तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै। जिसकै मस्तक हाथ, जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिकै, हर गुण हृदय टिकै तिसकै, जिस अंतर पौ पावनी होई, बिन पै किने ना प्रेम पाया, बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तसै लागै, जिस तू अपनी कृपा करै, तेरी भगत भंडारा संख, जिस तू देवै मेरे स्वामी तिस मिलै। तुखारी महला चौथा, नावन पुरबा बीच, गुर सतगुर दर्श पाया, दुरमत महल हरी अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया ज्ञान गवाया।

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख।

ना बिना सब दुनिया शार, अचर जो तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवां, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में कनामोदा।

चितवत पाप ना आल के आवै, बेसवा भजत किशनै शरमावै। सारो दिन समझूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, वा पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा व्यवहार रहाओ, पेखत माया रंग बिहाए। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवै। करने हार ना जी मैं आवै, करत करत इव ही दुख पाया। पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना। तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप। हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया। नानक सतगुर पूरा पाया, पैरों महला पंजवा। अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए। साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे। राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई। तार लय सागर संसार रहाओ, जिन को लिखिया हर एहो निदान। से जंतर गै पावै मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ। अगै मिले निथावे थाओ, जुगै जुगंतर एहो तत सार। हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागै। जन्म जन्म का सोया जागै, तेरे भगत भगतन का आप। अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ। नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा। नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी। रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरे भंडार, अगम्या मोला अपरिया पार। रहाओ नाम हमारे निचल तनी, नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारा पूरा साहो, नाम हमारा बेपरवाहो। नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ। नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निद पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई। धनवंते सही प्रधान, नानक जाके नाम निदान। पैरो महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा। तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभदात। तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा। हम तेरे पिखारी दान दे दातारा, तौ प्रसाद रंग रस माने। कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ। सा संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश। तुमरी माया ते कमल विगास, हम बलिहार जाऊं गुरुदेव। सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभ मेरे। गुण गावे नानक नित तेरे, पैरो महला पंजवा। सब ते ऊंच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊंचे ते ऊंचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए। रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जाका हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा। राख लीनो सब जन का पर्दा,
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੀ ਰੋਜ ਬਨਾਇਆ, ਬਲਨ ਬਰਤਨ ਕਉ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਤ ਆਇਆ। ਬੂਝ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਖਿਆ ਕਾ ਸਭ ਧੰਦ ਪਸਾਰ, ਵਿਰਲੈ ਕੀ ਨੋਨਾ ਮਿਆਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਬਿਆਪ, ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤੇ ਦੂ ਸੰਤਾਪ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਵਾਂਗੀ ਸਿਉਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਜਾਵੈ, ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨ ਹਾਰ, ਤੈਸੋ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ। ਏਕ ਵਸਤ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਤਾਹੀ ਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਮ, ਡਾਨ ਦੈਤ ਨਿੰਦ ਕਉ ਜਾਮ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਾਦ, ਤਿਨ ਨਿੰਦੈ ਨਾਹੀ ਕੇ ਸਾਧ ਰਹਾਓ। ਭਗਤ ਕੀ

निंदक की गत कत हु नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवां, नाम हमारा बेदर नाद। नाम हमारा पूरे काज, नाम हमारा पूजा देव। नाम हमारा गुरु की सेव, गुरपुर दृढ़ हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ। पैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई न जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नसे, जन अपने कह हर मन बसे। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह। संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक ओतपोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप। तेह जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभ कृपा करे। तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकटना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवा ले, अपने भगत का सदा प्रतिपाल है। सब किश जानो तिसके हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजन ता कह नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुए ते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहे काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रविया साहब एक रहाओ। तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत।
तेरी टेक तरिया पौ सागर राखण हार पूरा सुख सागर तेरी टेक नाही पौ कोए अंतर जामी साचा सोए तेरी टेक तेरा मन तान इहां उहां तू दीवान तेरी टेक तेरा प्रवासा सगल ते आवे प्रभ गुणतासा जप जप आनंद करह तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा पहराओ महला पंजवा प्रथमे छोड़ी पराई निंदा उतर गई सामन की चिंदा लोभ मोह सब कीनो दूर परम बैसनो प्रापे खजूर ऐसो त्यागी विरला कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम ते आए हर हर हरे सात जना कै संग निस्तरे बैरी मीत होए सम्मान सर्व मैं पूर्ण भगवान प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया गुरपुरे हर नाम दरड़ाया कर कृपा जिस राख है आप सोई भगत जपै नाम जाप मन प्रगास गुरते मत लई कहो नानक ताकी पूरी पई पैरो महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे सुख नाही पेखे नित नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संगत पाईए वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ बंधन मात पिता सुत बंता बंधन कर्म तर्म हों करता बंधन काटन हार मन वसै तव सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निधान बेअंत अपार जिसनों कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावे त्यों रखो गुसाई पैरो महला पंजवा गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर भेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत जन मरण की मिटी जमत्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ देह आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास गिरास जपो हर हरी पैरव महला पंजवा सब ते उच्चा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसै मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ पुरख निरंजन सृजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई गुरपूरे ते निश्चल मत पाई कर कृपा जिस राखन हारा ता का सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म स्यो लागो ध्यान पूर्ण पूर रहो निर्वाण भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल नानक कहो गुर पहे दयाल पैरो महला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटै कलेस सुख सहज निवास
तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे पूरे गुर की पाए सेव। सर्व सुखा प्रभ तेरो नाओ, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ। जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए। आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए। बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतरयामी। कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरण आए। पहरो महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवै। नाम बिहून सुखी क्यों सोवै। हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना साखा कत्या है। गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ। तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हूं मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरे दुख। काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ, आठ

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मैले दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जम तेरा खै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किश

सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत, सो वड भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ, सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा, कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जना आया प्रभु की सरना, आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिग ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे, नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जप तो हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किस चाख ना जो है, हर सिमरत दैत देव ना पुहै, हर सिमरत मोह मान ना बदै, हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया केला, जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग, नानक कहो प्रभु कृपा तार, सा सा सर देहो चितार, पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे बेद, आपे कटकट जाने भेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ, करण कारण पूर्ण समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ, दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ, आपे वन त्रिण त्र पवन सार, जाके सूत प्रोया संसार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिंदु जा नाही कोए, सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग, मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन, पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय, कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ, तन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल, अपने दास कौ दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुतबंध नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण, तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ, पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया, सिमरत हर नाम, सगल ब्याद मिटी त्रह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ, हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम, जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम, काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभमान, ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान,

नाव मेरे बंध पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दस दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचे हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ

सो सुरतान जो दोए सर तन है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा है, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सदबोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ, अंतर देव न जन अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग।

काई रहाओ पंखी मृग माया मैराते साकरमाखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कहे कबीर जैसे उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै काम्बरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रहमाना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दो दरवाजा साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत स्मरण की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर राज लियो अबनासी गंग गुसायन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर मन ना डिगे तन काहे कौ डराए चरण कमल चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कहे कबीर को संग ना साथ जल थल रखन है रघुनाथ पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास जमे जोत करे प्रगास बिजली चमके होया आनंद जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद एहो जियो राम नाम लिव लागे जरा मरण छूटे परम भागे रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत हम मैं गावन गावे गीत अनहद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया शांति त्रे खंडा आगम्या गोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को तरनी तरमंत
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभय अंतरमंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहां सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवर न पाइय गुर की साम। तारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रहो समाए। मन मध्य जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र माने असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट भेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। रहाओ कोट चंद्र में करे चराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोटा ठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

पार ब्रह्म का अंत ना लहै। 52 कोट जा कह रो मावली, रावण सैना जहते शली, सहस कोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदरप कोट जा कह लवै न धरै, अंतर यंत्र मनसा हरै, कह कबीर सुन सारंग पान, देह अपै।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सो है बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए ना मैं दुहयानी। दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रच ता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तारै, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत तो ते

मेरे प्रीतम कारण करण जोग, हाँ पावो तुम ते सगल थोक रहाओ। नाम जपत होवत उधार, नाम जपत सुख सहज सार, नाम जपत पप शोभा होए, नाम जपत बिघन नाही कोए। जा कारण एह दुर्लभ देहे, सो बोल मेरे प्रभु देहे, साध संगत में ओ विश्राम, सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम। तुझमे दूजा कोई नाहे, सब तेरो खेल तुझमे सुमाहे, ज्यो भावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवा। प्रभ प्रीतम मेरा संग राए, जिसे

प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो तहनु रहाओ। जा कौ खोजे सुर नर देव, मुन जन सेखना लह पेव। जा की गत में तो कही ना जाए, घट काटो घट काटो रया समाए। जाके भगत आनंद में, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट। सब कही ना जाए, घट काटो घट काटो रया समाए। जाके भगत आनंद में, जाके भगत कहो नाही खै। जाके भगत कहो नाही पै, जाके भगत कहो सदा जय। कौन उपमा तेरी कही जाए, सुखदाता प्रभर हो समाए। नानक जाचा एक दान, कर कृपा मोहे देहो नाम। बसंत महला पंजवां, मिल पानी जो हरे बूट। साध संगत त्यों मैं छूट, जैसी दासे तीर मीर। तैसे उदाहरण गुरह पीर, तुम दाते प्रभ देनहार। निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ। जिसे प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते पय मुक्त, भगता राधा जुग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन या गाना हर सह सुवाद। सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख परंपर देव। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एहो निदान। बसंत महला पंजवां, तुम बड़दा ते दे रहे, जी प्राण में रव रहे। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। हाँ कछु ना जाना तेरी सार, तू कर गत मेरी प्रभ दयार रहाओ। जापना तापना कर्म कीत, या वह नाही कशुरीत। मन में राखो आसेक, नाम तेरे की तरह टेक। सर्व कला प्रभ तुम प्रवीन, अंत ना पावे जलह मीन। अगम अगम ऊंचे ते ऊच, हम थोरे तुम बहुत मूच। जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी। जिन तू सेव्या सुखी से, संत सरन नानक परे। बसंत महला पंजवां, तिस तू सेव जिन तू किया। तिस आराध जिन जियो दिया। तिसका चाकर हो है फिर डान ना लागे। तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे। एवड भाग होए जिस प्राणी, सो पाए पर निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरथा, कशुना होई है पूर्ण अर्था। मानस सेवा खरी दुहेली, साध की सेवा सदा सुहेली। जे लोड़े सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम। सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान। हर कीर्तन में उत्तम धुना, नानक गुर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवां, जिस बोलत मुख पवित्र होए। जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस आराधे जम किश ना कहे, जिसकी सेवा सब किश लहै। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम रहाओ। जिसके तारे तरन आकाश, कटकट जिसका है प्रगास। जिस सिमरत पतत पुनीत होए, अंतकार फिर ना रोए। सगल धर्म है उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, संत सवा की लगो सेव। आद पुरख जिसकी यादान, तिसको मिलिया हर निदान। तिसकी गतमित कही ना जाए, नानक जन हर हर ते आए। बसंत महला पंजवां।
ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਲਾਗੀ ਪਿਆਸ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੰਤ ਬਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਾ ਰਹਾਓ, ਸਮਰੱਥ

है अंतर्यामी प्रभु दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार जसार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिध एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने करथाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ, ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ, ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ, ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ, ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ। ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ, ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ, ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ, ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਸੰਤ

सोई तुझै पछाण है। तेरियां भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ। तेरी सेवा तुझते होवै और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावै जिसनों तू रंग तरता। तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है भाणा, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुकद्या जाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझै अपना सूजै, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी। मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवै ए बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी। आवरियो पाओ ना को सूजै, नानक तरियै गुरबचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा। साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ। एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो। उस्त निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो। बसंत महला नावा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो ना जाए। रहाओ जोगी जंगम अरसन आस, सब ही पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार, ते पवसागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए, दीजै नाम रहे गुण गाए। बसंत महला नावा, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटो, कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोहे परसना साकै, गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार, तन नाम जप पाया। तृष्णा सकल विनाशी, मन ते नै सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध, सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै, को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा, मन कहां बिसार्यो राम नाम, तन बिनसै जम स्यो परै काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार, तैं साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत गृह, कै संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा, कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान, बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत, निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाए, कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बिसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोलै चीता नीत, जग स्यों तूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार, नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कर बालू का कुमन केर, बरखस बाणी बुध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर, सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और, नाम दुराए चले सो चोर।
ਪਤ ਖੋਈ ਬਖਿਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਰਜਾਏ। ਪੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਕਾਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਖੀਲੈ ਬਿਕਸੈ ਤੇ ਤੋ ਸੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਹੋਗ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਧਿਕ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖ ਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगाश। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए रहाओ। द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागे सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देख लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ रहाओ। पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उदारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੁ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

माया भागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरै बसै रहाओ। जैसे अपने तनह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों चगरत पाप रहाओ। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो तन किसे ना आप। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस तो लागे पछताप। जो तुमरे प्रभोते स्वामी हर तिन के जापो जाप। उपदेश करत नानक जन तुम कहो जो सुनो तो जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा दुपदे पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सो सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादिक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी तू आपे ही जन है अपनी पांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात। ते हर के जन हर स्यों रल मिले जैसे जन नानक सलल सलल मिलात। सारंग महला चौथा जप मानो नर हरे नर हर स्वामी हर सगल देव देवा। श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाओ। जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते। तित ग्रह वाजे पंच शब्द वडभाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए सब दोह गए सब रोग गए। काम क्रोध लोभ मोह अवमान गए। तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु। जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु। हर राम बोल सब पाप गवादु। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश सोरा। मन इच्छे फल पावो सबै फल पावो। धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा। सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो हर श्री रंगो परमेश्वरो। सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी। सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता। हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ। हर कटकटे कट बसता हर जल थले हर बसता। हर थान थनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ। कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो। मोहे मार्ग दिखलावे ते जन के हम मलमल तोमा पाओ। हर जन को हर मिलिया हर सरदाते मिलिया। गुरमुख हर मिलिया मेरा मन तन आनंद पाए मैं देखिया हर राओ। जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई जगदीशर कृपा पई। मैं अन दिनों सद सदा हर जपिया हर नाओ। सारंग महला चौथा जप मन निरपो सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी संपो। मेरे मन अन दिनों त्याय निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को कोट कोट तति सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले। जो पावत हर राम मुरारी जिनका अंग करे मेरा स्वामी। तिन की नानक हर पै सवारी सारंग महला चौथा पड़ताल। जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान सब सृष्ट का प्रभो। मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हरे हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पीवे जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले जे सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेवै सद सदा मेरा हर हरे तिनका सब दुख भरम पौ जासी। जन नानक नाम लय ता जीवै ज्यों चात्रक जल पी।

दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने, नहीं तुल गोबिंद नाम धुने, मन चरण कमल लागे, बरत संत सोच चार, क्रिया कुंट निराहार, अपरस करत पाकसार, निवली कर्म बहु विस्थार, धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे, राम दयार सुन दीन बेनती, देहो दर्स नैन पेखो, जन नानक नाम मिष्ट लागे, सारंग महला पंजवा, राम राम राम जाप, रमत राम सहाई रहाओ, संतन के चरण लागे, काम क्रोध लोभ त्यागे, गुरु गोपाल भय कृपाल, लभदे अपनी पाई, बिनसे प्रमोह वंद, टूटे माया के बंद, पूर्ण सरबत्र ठाकर, नह को बैराई, स्वामी सो प्रसन्न पए, जन्म जन्म जन्म मरण दोह गए, संतन के चरण लाग, नानक गुण गाई, सारंग महला पंजवा, हर हरे हर मुखो बोल, हर हरे मन तारे रहाओ, श्रवणन सुनन भगत करन, अनक पातक पुनः चरण, सरन परन साधु आन बान बिसारे, हर चरण प्रीत नीत नीत, पावन मैं मा पुनीत, सेवक पै दूर करन, कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त, रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत, नानक तत् बिचारे, सारंग महला पंजवा, नाम भगत मांग संत त्याग, सगल कामी रहाओ, प्रीत लाए हर त्याए, गुण गोबिंद सदा गाए, हर जन की रेण बांश, दैन हर स्वामी, सर्व कुशल सुख विश्राम, आनंदा आनंद नाम, जम की कछ नाहे त्रास, सिमर अंतर जामी, एक शरण गोबिंद चरण, संसार सगल ताप हरण, नाम रूप साध संग, नानक पार ग्रामी, सारंग महला पंजवा, गुण लाल गुण लाल लावो गुर देखे, गुण लाल गावो गुर देखे, पंचा ते एक छूटा, जो साध संग पग रो रहाओ, दृष्टो कछ संग ना जाए, मान त्याग मोहा, एक हर प्रीत लाए, मिल संग मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निधान, सगल आस पूरी, नानक मन आनंद पए, गुर बिखम गार तोरी, सारंग महला पंजवा, मन बिरागैगी, खोजती दरसार रहाओ, साधु संतन सेवक, प्रयो ही रहते आयो, आनंद रूपी पेह कै, हम महल पावोंगी, काम करी सब त्याग कै, हम शरण परोंगी, नानक स्वामी घर मिले, हाँ गुर मनावांगी, सारंग महला पंजवा, ऐसी होए परी जानते दयार रहाओ, मातर पितर त्याग कै, मन संतन पाहे बेचायो, जात जन्म कुल खोई है, हाँ गाव हर हरी, लोग कुटंब ते टूटी है, प्रभ किरत किरत करी, गुरमुख उपदेसिया, नानक सेव एक हरी, सारंग महला पंजवा, लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीट हस्त पाखान जंत, सर्व मैं प्रतपाल तू रहाओ, नह दूर पूर हजूर संगे, सुंदर रसाल तू, नह बरन बरन नह कुले कुल, नानक प्रभ कृपाल तू, सारंग महला पंजवा, करत केल बिखै मेल, चंद्र सूर मोहे, उपजदा बेकार दुंदर, नौपरी चुनंतकार सुंदर, अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रहाओ, तीन पौने लपटाए रही, काज कर्म ना जात सही, उन मत अंध तंध रचत, जैसे महासागर होहे, उदरे हर संत दास, काट दिनी जम की फास, पतत पावन नाम जाको, सिमर नानके ओहे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सारंग महला नामा, हर बिन तेरो को ना सहाई, काकी मात पिता सुत बंता, को काहू को पाई रहाओ, तन तरनी अर संपत सगरी, जो माने अपनाई, तन छूटे का संग ना चाले, कहां ताहे लपटाई, दीन दया

सब करना किरत कर लिखी है, कर कर करता करे करे, मनमुख मरी है गुरमुख तरी है, नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मनमुख दूजा परम है दूजा लुभाया, कूड कपट कमाम दे कूड़ोआ लाया, पुत्र कलत्र मोहेत है सब दुख सबाया, जमदर बदे मारी है पर मैं परमाया, मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा, जिन वड्याई तेरे नाम की, तेरते मन माहे, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे, नानक अमृत मने माहे, पाइये गुर प्रसाद, तिन्नी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया याद। महला दूजा, कीता क्या साला ही है, करे सोए साला है, नानके की बाहरा दूजा दाता ना है, करता सो साला ही है जिन की तायाकार, दाता सो साला ही है जे सबसे दे आधार, नानके आप सदीव है पूरा जिस पंडार, वड्डा कर साला ही है अंतना पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है सेवे है सुख पाई, नाम निरंजन उचरा पास्यो कर जाई, गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई, मत पंखेरु वस होए सतगुरु त्याई, नानक आप दयाल होए नाम मेले बलाई। श्लोक महला दूजा, तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान, चीरी जाकी ना फिरे साहिब सो प्रवान, चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार, जोत सभावै नानका साई भलीकार, जिन्ना चीरी चलना हाथ तिना किश नाहे, साहिब का फुरमान होए उठी कर लै पाहे, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवै नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा, सिफत जिन्ना को बख्शी है से ही पोतेदार, कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार, जय पंडारी हूं गुण निकले ते की है प्रवान, नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी, नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई, सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई, बहद्या उठद्या ना विसर साचा सच सोई, भगतां को नाम आधार है नामे सुखोई, नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला, नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाई है, एक सुना पुजे बोल जे पूरा पूरा कर मिले, वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल, धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडै तोलै सुनियार, तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए, मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला, आखण औखा सुनने औखा, आखना जापी आख एक आख, आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात, जे केहो होए ता केहो दिसै जापै रूप ना जात, सब कारण करता करे काटे आओ कट कट काट, काटे आओ कट कट थाप, आखने औखा नानका आपना आखना जापै आख पौड़ी। नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई, नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुनया ना उपजे नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत नामे गत पाई, गुरमुख नाम त्याई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला, झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की भेदी, झूठ ना यानी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरे है सब थाई, जूठना धरती जूठना पानी, जूठना पौने महे समाणी, नानक निगुरिया गुण नाही कोए, मोहे फेरे मोह जूठा होए। महला पहला, नानक चुलियां सुचिया जे पर जाने कोए, सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली नियाम की पढ़िया सच त्यान,
ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਈ ਮੁਖ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਏ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਿਧ ਪਿੱਛੇ ਆਵੈ ਨਾਏ ਸੁਣਿਆ ਨੌ ਨਿਧ

दरगह पाई यथाओ वेद व्यापारी ज्ञान रास कर्मी पल्ले होए नानक राशी बहरा लद न चलिया कोए पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र मिसाही है बहु दूध पी आया मन मुखिया पिन न भेजाई पत्थर न वाया बिखमय अमृत संची है बेका फल पाया नानक संगत मेल हार सब बिख लै जाया। श्लोक महला पहला मरण ना मूर्त पुछया पुछी थित ना वार एक नी लद्या एक चल एक नी लद्या एक लद चले एक नी बदे पार एक ना होई साखती एक ना होई सार लस्कर सने दमामिया छुट्टे बंक द्वार नानक ढेरी शार की पी फिर होई शार। महला पहला नानक ढेरी टह पई मिट्टी संदा कोट पीतर चोर बहालिया खोट वे जिया खोट पौड़ी जिने अंदर निंदा दुष्ट है नक वड्डे नक वडाया महाकरूप दुखिए सदा काले मोह माया पलके उठ नित पर दर बहरै हर नाम चुराया हर जियो तिनकी संगत मत करो रख ले वो हर राया। नानक पया किरत कमाम दे मन मुख दुख पाया। श्लोक महला चौथा सब कोई है खसम का खसमो सब को होए हुक्म पछाण है खसम का ता सच पावे कोए गुरमुख या पछाणिए बुरा ना दिसे कोए नानक गुरमुख नाम ते आई है सह लाया सोए। महला चौथा सबना दाता आप है आपे मिलनहार नानक शब्द मिले ना विछड़ै जिन्ना सेव्या हर दातार पौड़ी गुरमुख हृदय सांत है ना उगवे आया जप तप जप तप तीर्थ संजम करे मेरे प्रभ पाया हिरदा सुध हर सेवन दे सोहै गुण गाया मेरे हर जियो वै भावदा गुरमुख उतराया नानक गुरमुख मेलियान हर दर सोहाया। श्लोक महला पहला धनवंती इवही करै धनवंती धनवंता इवी कह अवरी कौ तन जाओ नानक निरतन तित दिन जित दिन विसरै नाउ महला पहला। सूरज चढ़ै वियोग सबसे घटै आरजा तन मन रता भोग कोई हारै को जणै सब को परिया फूक आखण कहण ना थमिया नानक वेखै आप फूक कढ़ाए टहे पवै पौड़ी सत संगत नाम निधान है जिथों हर पाया गुर प्रसादी कट चरणा अनेर गवाया लोहा पारस पेटी है कंचन होए आया नानक सतगुर मिलया नाउ पाई है मिल नाम ते आया जिनकै पोतै पुन है तिनी दर्शन पाया। श्लोक महला पहला त्रिकत न का जीविया जे लिख लिख वेच नाउ खेती जिनकी उजड़ै खलवाड़े क्या था ओ सच्चे समय बाहर है अगे लह ना दाद अकल एह ना आखी है अकल गवाई है बाद

जैसा करै कहावै तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवै लिंग चिंग न होवै ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श में लायान फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता क्षमा जप माली ते मानस प्रधान। जुगत

खेल परयो है तो स्यो रहाओ। आपन देओ देहराय आपनो आप लगावै पूजा, जल ते तरंग तरंग ते है जल, कहन सुन कौ दूजा। आपै गावै आपै नाचै आप बजावै तूरा, कहत नाम देओ तू मेरो ठाकरो जन ऊरा तू पूरा। दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन, परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ। मेरी बांदी भगत छिड़ावै, बांदै भगत न छूटै मोहे, एक समय मोको गहे बांदै तौ फन मोपै जवाब ना होए। मैं गुणबंध सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी तैसो ताके प्रेम प्रगास।

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ, तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वर आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बुंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार पई सुहागण, मन तन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग पई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हो मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन भावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजै बादी बिरसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहां तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उरतारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जै जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न में जरते, नानक सरन चर

हम तेरी तार स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे, स्त्री रूप चेरी की न्याई, सोब नहीं बिन परतारे, बिनो सुनियो जब ठाकर मेरा, बेग आयो कृपा तारे, कहो नानक मेरो बनियो सुहागो, पत सोबा पले आचारे, मलार महला पंजवा, प्रीतम साचा नाम ते आए, दुख दर्द बिनसै भव सागर, गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाओ, दुश्मन हते दोखी सब व्यापे, हर शरण आई आया, रख न हारै हाथ दे राखे, ओ नाम पदार्थ पाया, कर कृपा किलविख सब काटे, नाम निर्बल मन ली दिया, गुण निधान नानक मन वसिया, बाहुड़ दुख न थिया, मलार महला पंजवा, प्रभ मेरो प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दी जय, दयाला नगरो तारे रहाओ, सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा, संत जना पै करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा, बिशरत मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दी जय, नामाधार जीवन ता नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय, मलार महला पंजवा, अब अपने प्रीतम स्यों बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नमै निद पाई, अदोत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई, तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण ते आई, मलार महला पंजवा, कान हर बरस सगल जगशाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ, मिटे कलेश तृष्ण सब बूझी, पार ब्रह्म त्याया, साध संग जन्म मरण निवारे, बहुर न कथूं ताया, मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया, मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवन ओए जीवन, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलबे की, चरण कमल रस पीवन रहाओ, जिन कौ प्यास तुम्हारी प्रीतम, तिन कौ अंतर नाही, जिन कौ बिसरै मेरो राम प्यारा, से मुए मर जाही, मन तन रव रहया जगदीशर, पेखत सदा हजूरे, नानक रव रहयो सब अंतर, सर्ब रहया पर पूरे, मलार महला पंजवा, हर कै भजन कौन कौन ना तारे, खग तन मीर तन मृग तन ब्राह तन, साधु संग उधारे रहाओ, देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर, सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग, ताके दुख बिदारे, काम क्रोध महाबिखिया रस, इनते पय निरारे, दीन दयाल जपै करना मैं, नानक सद बलिहारे, मलार महला पंजवा, आज मैं बैस्यो हर हाट, नाम रास सांझी कर जन स्यो, जाओ न जम कै काट रहाओ, तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे, ब्रह्म के खुले कपाट, बेसुमार साहो प्रभ पाया, लाह चरण निदखाट, शरण गही अचत बनासी, किलविख काढ़े है शांट, काल कलेस मिटे दास नानक, बहुरना जोनी माट, मलार महला पंजवा, बहुबिद माया मोहे हेरानो, कोट मदे को बिरला सेवक, पूर्ण भगत चिरानो रहाओ, इत उत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दुराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो, मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो, कहो नानक पाहन प्रभ तारो,
साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए बिख खाई री माई, जिसके जी तिन ही रख लीने, मेरे प्रभु को कृपा आई रहाओ, अंतर जामी सब मैं वरतै तापो कैसा पाई, संग सहाई छोट ना जाई, प्रभु दी सह सबनी ठाई, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओढ़ जी वै दास तेरे, नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ, खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै, त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभु को भगत वचन बिरदायो, निंद कुमार चरण तल दीने, अपने जस वरतायो रहाओ, जय जयकार कीनो सब जग मैं, दया जियन मैं पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो, अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणिया विस्थार, गुरमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार, मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसरे हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ, गुर के चरण मिटो बल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाई है मान, गुर बोएथ पवजल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुर आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जा की कीम ना पाई। मलार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेव को ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही ना जाए, कर कृपा पूर्ण सुखदाते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ, गावन सुन सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो साज समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्स पाणे दे सजाए, दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने, सेई भगत जो तुद पाणे, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेसर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत तृपतासे, कार्य आए पूरे रासे, सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपुरे की सेवा पाया, ऐथै उथै निभै नाल रहाओ, दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करता है आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगह पाई है मान, ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਨ ਚੰਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਿਆ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਨਾ ਚਾਖੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਚੈ ਨਾਏ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਭ ਸਾਚੀ, ਸੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਗੁਰਸੰਗ ਰਾਚੀ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਵਡਭਾਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨਿਵਾਸੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮਨਾਰ ਪ੍ਰੇ ਦਿਆਰ ਸਿਉ ਰੰਕੀਆ, ਕਿਨੋਰੀ ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ, ਤਜਿਓਰੀ ਸਗਲ ਬੇਕਾਰ, ਤਾਪ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਥੀਆ ਰਹਾਓ। ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਏ ਕੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕੈ, ਕਰ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਸੰਗ, ਬਾਜੇ ਬਜੈ ਮਿਰਦੰਗ, ਅਨਾਹਦ ਕੋਕਲਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤ ਸੁਹੀਆ, ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਭ, ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਮੋਗ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗ ਸੰਤ ਬਨੇ, ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮ ਭਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲ, ਮਨ ਫੇਰ ਤੇ ਹਰ ਸੰਗ ਸੰਗੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮ ਥੀਆ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਕਨੈ ਪ੍ਰਮੈ ਬਨੈ ਉਮਕਤ ਰਸ ਚਾਲੈ, ਪ੍ਰਮ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਈ ਮੋਹ ਆਈ, ਕਹੋ ਬੇਦਨ ਕਾਹੇ, ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ, ਨੈ ਦੁਖ ਸਾ ਕੈ ਲਾਹੇ। ਭਜ ਸਰਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿਲ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਗਾਹੇ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨਿੱਕੀ, ਹਾ ਹਾ ਹੂ ਹੂ ਗੰਧਰਵ ਅਪਸਰਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨਿੱਕੀ ਰਹਾਉ। ਧੁਨਤ ਲਲਤ ਗੁਨਗ ਅਨਕ ਭਾਂਤ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਨਿੱਕੀ, ਗਿਰ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਭਵਨ ਭਰਪੁਰ, ਘਟ ਘਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨਿੱਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਮਈਆ ਰਸ ਪਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਭਾਵਨੀ ਨਿੱਕੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੋਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ। ਰਹਾਓ ਦਰਸ ਸਫਲਿਓ, ਦਰਸ ਪੇਖਿਓ, ਗਏ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜਿਆਰੇ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ ਭਈ, ਅੜਗ ਕੋਟ ਹਰਤੇ ਨਾਮ ਲਈ, ਗੁਰਚਰਨ ਮਸਤਕ ਡਾਰ ਪਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਭਗਤ ਟੇਕ ਤੁਹਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਰਸ ਸਰਸ ਆਗਿਆ, ਹੋਹੇ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਭਾਗ। ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਮਨ ਪਰ ਫੜੈ, ਮਿਲ ਮੇਘ ਤਰ ਸੁਹਾਗ, ਘਨ ਘੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਰ, ਚਿਤ ਚਾਤਰਕ ਬੂੰਦ ਓਰ। ਐਸੋ ਹਰ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮੋਹ, ਤਿਆਗ ਮਾਇਆ ਤੋਹ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਗਿਆ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਓ ਨੀਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਾਰ ਚੀਤ ਰਹਾਓ। ਛੋੜ ਮਾਨ ਤਜ ਗੁਮਾਨ, ਮਿਲ ਸਾਧੂਆਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਏਕ ਰੰਗ, ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਦੋਖ ਮੀਤ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਏ ਦਿਆਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਬਿਖੈ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਗ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਤ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਨ ਗਰਜਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੈਨ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਤਰਨ ਸਾਗਰ, ਧੁਨ ਅਨਹਤਾ ਰਸ ਬੈਨ, ਪਥਕ ਪਿਆਸ ਚਿੱਤ ਸਰੋਵਰ, ਆਤਮ ਜਲ ਲੈਨ। ਹਰ ਦਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੈਨ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।
ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਵੀ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਨੈ ਚਾਹੈ ਬਿਨ

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपै ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू परपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पहे कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार बर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सहि समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत खत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साजना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृपतानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहू मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत प्रमला गरिया अनित व्यवहार आचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार पूम पागे बिखैरा स्यों आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संग मलाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ। आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना। हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन। मान मोह त्याग छोड़ आओ तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खा टंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभु मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवां, कर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवां, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही दंड धार सुवाओ। जतन पांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवां, करनावां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ अनाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवां, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बिकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश, मन दर्शने की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास, कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवां, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवां, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨ ਆਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै, साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै, हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै, राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ, स्वर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय, हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय, मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै, चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै, काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद शेद रस पीजै, आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय, महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दी जय, साधु साधु साध जानी के जनंतर नाम तरी जय, परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय, साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नी जय, तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै, सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै, अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै, मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै, नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा, रामा राम राम राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ, जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन कौ थम दी जय, बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय, अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय, गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय, मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय, राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय, गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय, साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय, ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागरे अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभु कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्ट करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। भूल चूक तेरा दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदा मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदै सोई बिद जाने गुर कै शब्दे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैल उजल सच सोए ऊतम आखना उच्चा होए मनमुख खूल महा बिख खाए गुरमुख होए सोरा चैन आए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीणो नीच बुरो बुरो यार। नी तन कहो तन नाम प्यार एह तन सार होर बिखिया शार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवै तिस कहो जयकार। तू बख्शै जात पत होए नानक कह कहा वै सोए प्रभाती महला पहला। खाया मैल वधाया पैदा कर की हान बक बकवा चलाया बिना मैं बिख जान। बाबा ऐसा बिखम जाल मनवासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बादे मारी है छूट सच है नाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख लै जाए मन मुख मूल गवाया दरगह मिलै सजाए। जग खोटो सच निर्मलाओ गुर शब्दी विचार ते नर विरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरै नीजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थै पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला। गीत नाद हरख चतराई रह सरंग फुरमाए सकाई पैनन खाना चीत ना पाई साच सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किशना सुखावै रहाओ। जोग बिनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कार निज संदा।

जन नानक हर प्रभ इक प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए ना पाइए कतहूं। गुर पूरे हर प्रभ लाभ रहाओ राम नाम रस राम रसायन। रस पिया गुरमत रसबा लोह मनूर कंचन मेर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने। पुत कलत मोहे लुभबा तिन पग संतन सेवे कभू। ते मनमुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम परे हार तुम सरन बा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मानो हर हर नाम निधान। हर दरगह पावे मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया। पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा धरत बर्तन कौ पानी। निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते। हर सोग ते रहे निरारा ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए। मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत। सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोई ना होवे। कोट अपराध एक खिन में तो होवे। दात करे नहीं पछोतावे। एका बख्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया पाल। साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार। जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां। प्रभ की सेवा जन की सोबा। काम क्रोध मिटे तिस लोबा। नाम तेरा जन कै पंडार। गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई। काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग। तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन। पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए। जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए। अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार। जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा। नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां। गुण गावत मन होए आनंद। आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे। सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा। सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए। हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया। जिस प्रसाद मोहे नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया। तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी। गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव। वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां। सगले दुख मिटे सुख दिए। अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए। सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल।
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरगोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसेखिन पीतर पै कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म आराधी अपने सतगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाई है लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सो बावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ।

मार्ग हर पाई मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हमें विचों जाए, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाए। गुरमती मोसोण हर राख्या उतार, एथे उथे सुखना जप हर हर उतरे पार। हमें विच जागरण ना हो वई, हर भगत ना पवई थाए। मन मुख दर टोई ना लह, पाए दूजे कर्म कमाए। त्रिखाना त्रिक पहनना जिन्ना दूजे पाए प्यार। बिष्टा के कीड़े बिष्टा राते, मर जमे हुए खुवार। जिन कहो सतगुर पेटिया तिन्ना विटों बल जाओ। तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरे भाग गुर पाई है उपाय कितै ना पाया जाए। सतगुर ते सहज उपजाय हमें शब्द जलाए। हर सरनाई भज मन मेरे सब कुछ करने जोग। नानक नाम ना विसरै जो किश करै सो होग। विवास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता, चुगे चोगा आनंद स्यों जुगता। उर्ज परयो मन मीठ मोहारा, गुण गाहक मेरे प्राण आधारा। एक हमारा अंतर जामी, तर एका मैं टिक एक सकी। सिर साहा वट पुरख स्वामी रहाओ। छल लागन स्यों मेरी टूटन होई, गुर कया ए झूठी तोही। मुख मीठी खाई कौराए, अमृत नाम मन रहया अगाए। लो मो स्यों गई वे खोट, गुर कृपाल मोए कीनी छोट। ए ठगवारी बहुत कर गाले, हम गुर राख लिए कृपाले। काम क्रोध स्यों ठाठ ना बनया, गुर उपदेश मोहे कानी सुनया। जै देखो तै महा चंडाल, राख लिए अपने गुर गोपाल। दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कया ए रसै बिखागन। इन संबंधी रसातल जाए, हम गुर राखे हर लिवलाए। अहम मेव स्यों मसलत छोड़ी, गुर कया एहो मूर्ख होड़ी। एहो नींगर कर कही ना पाए, हम गुर राख लिए लिवलाए। इन लोगन स्यों हम पहे बैराई, एक ग्रे मैं दोए ना खटाई। आए प्रभ पह अंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरबाग। प्रभ हस बोले किए न्याय, सगल दूत मेरी सेवा लाए। तू ठाकर एहो ग्रहो सब तेरा, कहो नान गुर किया नबेरा। प्रभाती महला पंजवां, मन मैं क्रोध महाहंकार।

सोई निरंजन देव। श्लोक सहस कीर्ति महला पंजवां। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतै कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबियते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत अरहंत संग भगवान सिमरन। नानक लब्ध्यं अचत तनै त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै त्रिग स्नेहं बंता बिलास सुतै त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै साध संग स्नेह साध संग स्नेह सत्यं सुखयं बसंत नानकै। मिथ्यंत देहं खीणंत बलं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आशा आथित भवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ देहं तत् आश्रयं नानक। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत दोयं लेपनंग रक्त चरमण नवंत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग अस्तंभन। गोविंद नामंग नय सुमरंत अज्ञानी जानंत अस्थरंग दुर्लभ देह उदरंत साध शरण नानक। हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला। गंभीरं ऊचै सर्वज्ञ अपारा प्रत्यापरं विश्राम चरणं अनाथ नाथे नानक शरणं। मिर्गी मिर्गी पेखंत बद्धक परहारेण लखयावदै अहो जासर खेण गोपालै नानक रोमना छेदयते। बहु जतन करता बलवंत कारी सिवंत सूरा चतर दिशै बिखम थान बसंत ऊचै नै समरंत मरणं कदांचै। होवंत आग्या भगवान पुरखै नानक कीटी सासया करखते सबदं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रा गत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं। दृष्टत्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रयंग जाप जपना। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुत प्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं। नह कटंत केवल गोपाल अच्युत अस्रंग नानक साध जान। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं तरम लखन। नानक जे सो प्रसन्न माधवै मृत मोहं अल्प बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं। जोबन बहकरम कनक कुंडल बचित्र मंदर सोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं। हे अच्युत शरण संत नानक हो भगवान ए नमै। जन्मं ता मरणं हरखं ता सोगं भोगं ता रोगं ऊचं ता नीचं नाना सोमूचं राजं ता मानं अभमानं ता हीनं। परवर्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेण अस्थरं। नानक भगवंत भजनासनं कृपं ता हरियं मत तत् ज्ञानं विकसीद बुद्धा कुशल थानं। बस्यंत रिखियं त्याग मानं बस्यंत रिखियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं। अरहंत जन्मं हर दर्शलीना बाजंत नानक शब्द बीना। कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ंत सुविद्या हर हर कृपाला। नाम

नह चिंता मात पित प्रहतै, नह चिंता कछ लोक कै, नह चिंता बंता सुत मीतै, प्रवृत माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपालक है, अनित वितंग अनित चितंग अनित आसा बहुविध प्रकारं, अनित हेतंग अहं बंदंग परम माया मलनंग बेकारं, फिरंत जोन अनेक जठ रागन नै स्मरंत मलीन बुद्धियं, हे गोविंद करत माया नानक पत ते उदाहरण साध संग मैं, गिरंत गिर पत पातालं जलंत दे दीप बै स्वंतर, भांता गाह तोयंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंगता मरण, अनक साधनंग ना सिद्धिया ते नानक, अस्तंबं अस्तंबं अस्तंबं शब्द साध सवजन, कोर दुखयं अनकहतयं जन्म दारिद्रंग महाबिख्यादं, मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ट पस्मं करोत, अंधकार सिमृत प्रकाशं गुणर मंत यज्ञ खंडन, हरिद बसंत पै पीत दूत, कर्म करत महा निर्मल, जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोग दर्शन, शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत, पाशं क्रोत अग्रणी वै निरासं आस पूर्ण, निर्तन पयं तन मंत, रोगियं रोग खंडन, भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन, पार ब्रह्म पुरख दा तार नानक गुर सेवा किंग ना लभ्या ते, अतरंग तरंग तारण निर्तनं तन नाम नर हर, अनाथ नाथ गोविंद बलहीन बल केशव, सर्वभू दयाल अच्युत दीन बांधवदा मोदर, सर्वग पूर्ण पुरख भगवान भगत वच्छल करनामय, घट घट बसंत बास देव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जाचंत नानक कृपाल प्रसादं, नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण है, नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम परखोत्मं, तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं, परण पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं, सृजंत रत्न जन्म चतर चेतन, वर्तंत सुख आनंद प्रसाद, सिमरंत नानक हर हर हरे, अनित रचना निर्मोहते दानं पराबूर बेण, पुचंते महीपते विपरीत बुद्धियं मारत लोकै, नानक चिरंकाल दुख भोगते, बिरथा अनुग्रं गोविंद जस सिमरन।

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते, सहनशील संतंग सम्मित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन, सैना साध समूह सूरा जितंग सन्ना हम तन अमृता आव दे गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार गए विचरते निरपयंग सत्र सैना, तायंते गोपाल कीर्तन जितते विश्व संसार है नानक वस्यंग क्रोध पई तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटांब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम, नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन, नच रागरतन कंठं नह चंचल चतर चतर, भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित, कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नै नंदनी, गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै, सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारणै, कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन, नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन, नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर, नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास, नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल, दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग, जत कतै ततै दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते, बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन, दुखंग पयंत सुखयंग पह पी पंत निर्भय, थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुरै, सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन, सर्व कर्तव ममंग कर्ता

बाद समन जवे इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जां को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए। कबीर जां दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हो फिरे ओ कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
पवन वहै हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुसमुस लावै हाट, एक कबीरा नाम सह जिन कीनी बारै बाट। कबीर सूख ना एह जोग करै जो बहुतै मीत, जो चित राखै एक स्यों ते सुख पावै नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर तास्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपति आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजल की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कौ पैस जो निक सजाहे। कबीर यहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यहो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पीना जानिया कोए। ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बहुर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेंक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जिन सरपार। कबीर हार्ड जर

करते हुए सो होए। कबीर वैष्णव की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों वरन गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वरन कुल जाए। कबीर मुक्त

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौ बेद मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का स्मरण छाड़ कै अहोई राखे नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामो कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जग तो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का स्मरण छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सै नाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बर्ख भरे सरताल, चात्रक ज्यो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्री ज्यो निस्बिछर आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसै उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो की नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार।

कबीर काल करंता अब है कारो, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतिक देखिया जैसी धोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जम ना करे तिस्कार, जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास, ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गज परयो कुटुंब कै कंठे रह गयो राम, आए परे धर्म राय के बिचे तू माताम। कबीर सागते सूकर पला राखे अच्छा गाओ, ओ सागत बपरा मर गया कोई ना लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसनो हुआ ता क्या पया माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोना होए रहो बाट का तज मन का अपमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा

कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है, निर्दावे रहे निसंक, जो जानु निर्दावे रहे सो ग्रह इंद्र सोरंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा, पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे, त्यों एहो खिसे शरीर, ए दो अखर ना खिसे सो गह रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की दे दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए, बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संत, जो कोटक मिले असंत, मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पया, पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए, कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया, दिशा गई सब पूल, ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह, दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जह अन पौत है पह नहीं, जह पौत है हर नाहे, कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की, कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा, साई ना बैरा होए, जा कारण तू बांग देहे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या अज काबे जाए, कबीर जाकी दिल साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगटै बुझे बलंती नाए। कबीर जोर किए, कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकार। कबीर राम मैं राम कहो, कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे, ते कर मरहट सारखे भूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा, बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकरे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मान नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी पूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ से लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ में क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर।

कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से मार मुहै मोए खाए। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए, ओ साचे दीवान मैं पल्ला ना पकड़ कोए। कबीर धरती अर आकाश मैं, दोए तू बरी अबद, खर दर्शन संसे परे अर चौरासी सिद्ध। कबीर मेरा मुझ मैं किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ मैं रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। कबीर बेकार है चितवते, झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे हो चले उठ निरास। कबीर हर का स्मरण जो करे, सुखी सो सुखिया संसार, एते उत कत ना डोले, जिस राखे सृजनहार। कबीर कहानी पीड़ते, सदगुर लिए छड़ाए, परा पूर्वली पावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भजयो ना खत फटियो, कल पहुंचो आए। महला पंजवां, कबीर कूकर भौकना, करंग पिछे उठताए, करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। महला पंजवां, कबीर धरती साध की।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हुके ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ, फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोई है आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ी, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर सतल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तो है साध परम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। टूंडत डोले अंधगत, अरचिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

जब गुर देखै सब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए इक चित्तै लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तहावै निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो।

वर्ष एक हों फिर ओ किने नो पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजै लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुना हो ज्ञान है आसन चढ़े आओ धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तै दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंथ न आवै रव संस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर्ज ने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जा को फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अन पौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीरस नहो फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तै जगतो धारण पायो
जगतो उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत जोग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर तरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, तन लैणा थाप जोत जगतारी, लहणे पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णन, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनों बात निश्चल त्रू जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मा जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਤਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पे।

पंजन गण समरथ तरन तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन्म थरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को, हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत हैं, धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत हैं। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत हैं, रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत हैं। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कल युग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरै फिरत सगल युग, कब होक को उपावै आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जा को, शिव मुन गहे नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेह लोग प्रगासे, देख दर्श पटक परम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर। गण गंधर्व खोजंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे करण कारण समरथ सदा सोई। सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो, जय जग में तै हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओ ही ओ। गुर अमरदास करतार की

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पण। तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर समरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर समरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुमली अगर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई मोह मल बिवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पात सचो तखत योग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पाण तू अटल राज पग दल तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर आद जुगा ध्यानाद कला तारी त्रे लोवे अगम निगम उदरन जरा जम्मे आरोवे गुर अमरदास थिर थपे आओ परगामी तारण तारण अग अंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी सरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरखा चल अबनासी जे सिमरत दुरमत बलनासी सदगुर चरण कवल रे तारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग कौ जय तवार हर जन क्यो पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर असन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दृढ़ायो आगम्या गोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपौ ठहरायो जनक राज बरताया सतयुग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीणा खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जन वरियो पारस परस प्रमाण सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संपो पै पंजन पर दुख निवार आपारिया नम पो अगै गहन परंपात दहन शीतल सुखदाताओ असंपो उदव्यो पुरख पूर्ण विधाताओ नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुर रामदास तन तन गुर रामदास गुर जिन पारस परस में लायो जय जय कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो वडभागी लिव लागी मेदन पर सहिता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नानक हुटै गुर रामदास तन

कह नानक पज हर मना औद जात है बीत। बिरद भयो सूजै नहीं काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बावरे क्यों ना पजै भगवान। धन धारा सम

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन

काट काट में हर जू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दियोतर है पार सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक अपन तरै, और न लेत उधार। ज्यो सुपना यार पेख ना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जौ सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो ठगौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात तह जो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गाय पात्र। दुतिया माल कौसकिया लाप, संग रागनी पांचौ थाप, गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशको भारा, खौ खटियाओ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरसबान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरे है कर रावण दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदयां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहे

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभा।

अहंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल।

भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मा माहे ता के रूप ना कथने जाहे ना ओहि मरहै ना ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भांड।

प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट दी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान।

कंत ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार। जब लग शब्द ना पे

वसहि ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार मुया जित कर जाइए तित जीम दिया मर मार अनहद शब्द सुहावणी।

एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न पीजै साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुरु जे मिलै ता पाईऐ गुणी निधान मान रे हो मैं छोट गुमान हर गुर सरवर सेव तू पावह दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित

जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो भाव जल पचाय पचाय यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाय जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हौमै ममता मार कै हर राख्या उरतार,

तीजा बहु भीख कर भरमाइए मन हृदय कपट कमाए हर का महल न पावई मर विष्टा माहि समाए मन रे ग्रह ही माहि उदास सत संजम करणी सो करे गुरमुख होए परगास रहाव गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त कर है मह पाए हर का नाम ते आइए सत्संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करहें नवखंड राज कमाहें।

दया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

पार। गुरमुख जब तब संजमी हर कै नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा, मनमुख मोह व्यापया बैराग उदासी ना होए। शब्द न चीने सदा दुख हर दरगाह पत खोए। हम मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित आसा, सदगुर सेव मोह पर जलय कर ही माहे उदासा रहा। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै हर बैराग आनंद, अहनस भगत

सो हर रस खाए सेवड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए इहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्लै ना पवै मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगै ना निवहै।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसिया मन आए अंतर ज्योत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिया अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिया लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभु शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह।

नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बिखसिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों, मरै ना आवै जाय, ना वे छोड़िया बिछड़े सब।

राम नाम अमृत नगर निहाल, मन मेरे सदगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार। रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्थ लक।

दूर थान थन तर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजियो।

नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन्ही कीत रतन।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओ रस जाने जिंद संतां संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद जिन सेव्या प्रभ अपना सोई राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

रहा सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ, से मथे नेचल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पाथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लख करोड़। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख जाओ।

रहाउ जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे यड़े शहु सेव तू साहुरड़े सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

पंजवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकी आ आकार तिसह त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पां साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो न कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

संसार आप छोड़ सब होए रीणा जिस देव प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवां दो

ठाकुर सर्वे समान, क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाहीं तेरी कवन जुगता।

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां।

पास सत गुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

का नाम। सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप, गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप। नदर करे ता पाइय सच नाम गुणतास, गुर

आवै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दरवेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

ना जाए। नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहनी।

त्याग महला पहला। आपे गुण आपे कथै, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार। साचो

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गुरडाखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर

जान, बिन गुर कर्म न छुट सी, कह सुन आख बखान। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी, मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा, ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

हार, हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा

क्यों थिर रह सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुरजिया बल जाओ रहाओ।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है, शब्द मिले रंग होए रहाओ, गुर सेवा सुख पाई है, हर वर सहज सिंगार, सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सियाणी है, गुर मेली गुण चार, साच मिल

मन महमनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत ता गैरल मिले गल मोतियन का हार। संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार, खिन मह उपजय खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाण।

की सच बोल, आप तुलाए तोलसी पूरे पूरा तोल, कथने कहन न छुट्टिये ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइये बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतारू, श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार, मन दीजे गुर अपने पाइये सर्व प्यार,

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै के हे कर्म मिले सो पाई किरत पया सिर दे

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

मस्तक सच नीसान बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ै को सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसिया सोए नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए ज्यों सुपने निस भुलिया जब लग निंद्रा होए इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए गुरमत होए विचारिय सुपना एहो जग लोए।

पहले स्तार है अष्टपदियां, श्री राग महल्ला तीजा। कर पहला अष्टपदियां, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय।

मनमुख पत गवाई। बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई। हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड है चौं दिस जाए जेता उड है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए।

गुर कै शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावै।

यो प्रगट पहारै जापदा सब नावैनो परतापदा सतगुर बाजना पायो सब मोहि माया जाल जियो सतगुर कौ बल जाइय जित मिलिय परम गत पाइय।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लहर लाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन्न सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछता।

मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया। मात पिता भाई सुत बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म

सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात, कहो नानक भगत सोह है दरबारे, मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै। सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख हर हर सदा त्याए, सहिया विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुडाए। लेखा धर्म राय की बाकी जब हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दे।

बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा हो मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

सतगुर तुठे, लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाउ सर्ब सठापुर दीना, नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना, श्री राग के

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावण अवर न करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिनना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर

इतना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तडाया। श्लोक महला तीजा।

कमाए, कूड कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम,

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

मुख उज्जले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह

परे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है, गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अन दिन हर लिवता।

कनक कलश एक पाया, तिसमह तार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए।

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारै, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है।

भाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत न आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावहु गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइये होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वट समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिये तित तरिये गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमरत ठंडा थीमा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

खीर अगावै, ज्यों निर धन धन देख सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो, ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो, संतन मोकौ हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो, माज महला पंजवा, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

आई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय बसेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा, प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो। प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत, हर ध्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोकौ साधु दिया, किल बिख काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो।

नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संगराता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता।

वार वार जाहिं तिस बिटहुं जो मन तन तुद अरादे जियो तिस चरण पखाली जो तेरा मार्ग चालै नैन निहाली तिस पुरख दयालै मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रभला दे जियो सेवट भागी जिन तुम जाने सब कै मध्य अलिप्त निर्बाणे साध कै संग उन पौजल करया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दी जय नानक कौ तिस प्रभ अगम अगाधे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ शाख तेरी फूली तू सूखम होवा अस्तूली तू जल निध तू फेन बुद बुदा तुद बिन अवर न पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवर न कोय दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्वाण रसिया रंग राता अपने करतब आपे जान है आपे तुद संभालिए जियो तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे तू ठाकुर सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नदर ने

से कर भले जिनि हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौं बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका भोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना।

अमृत वर्खा अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वड भागी।

सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो। माज महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दै दिस वरसाया। शांत पई बुझी सब तृष्णा, आनंद

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेलै, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो वारी एकस स्यों चित लावणिया गुरमति मन एकत घर आया।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

मनमुख मुगद करह चतराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मनमुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मनमुख कर्म करे नहीं।

सच विहज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सवाए बिन

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवे हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब भुख लह जा बणिया।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता, अमृत सहज सुना बनिया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए, नाम न लेवै मरै बिख खाए।

माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सालाहीं, गुर शब्दी सच पावणियां।

सब कट अंतर सचो सच सुभा बनया सच सालाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनया सच मन।

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहै। सच नाम मल कदे ना लागै, मुख उजल सच।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिलै मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हौमै मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

जय शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख